0: अभिराज
1: तुमको इत चाहया ना रिजो
0: आई ताय ताते बतारा गुरु ते आगन
1: एता संगया दिबादी
0: समोहन ulah kaget astrajinga dawala gatot gatot